व्यास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करें आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे आ भरपूर मत्था टिक्का तेर धोती का खाई हर छुरी।

गुरु बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथम

सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा विसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा विसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोही महला चौथा हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलघा पाओ जन्म मरणा मिट्यो गुर सबदी हर अस्थिर सेव सुख समघा हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलघा पाओ जन्म मरणा मिट्यो गुर सबदी हर अस्थिर सेव सुख समघा मेरे मन भज राम नाम अत पिरघा मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगै सिर वेच लियो मुल महगा रहाओ नरपत राजे रंग रस मान है बिन नावे पकड़ खड़े सब कलघा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पशुताने हाथ फलघा

तुम समराथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोकौ की जय दान हर निमघा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विटहौ सद घुम घा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला चौथा हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलघा पौ जन्म मरणा मेट्यो गुर सबदी हर अस्थिर सेव सुख समघा।

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

जैसे बन बिखे मले आगर सौधा कपूर, सोध कै सुभासी सुभास बहसा वही, तैसे गुरबाणी बिखे सकल पदार्थ है, जो

रंग प्रंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब तेरा बस तेरा घर पला तेरा कर अना

ते मुख उजले किती सुठी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जीय तुम्हारी जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाओ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आखे वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहुसिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आपे विछोड़िया आपे मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आखे वखाणे जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया
तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोय। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पैले निवासा। पानी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया। मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। पही परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जप

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाई ब्रह्मा बाप तरा, काल पाई शिवजू अवतरा। काल पाई कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्टि सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा होय बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलीश करो रणकाता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन

हरे तिन के तुम संकट सब टारे। जो कल कौ एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ दोहरा

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। सलो

रतन नाश पैश पाया, हार गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठाई, रहाओ रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, कहो भीखन दोए नैन संतोखे, जह देखा तह सोई, रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, कहो भीखन दोए नैन संतोखे, जह देखा तह सोई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे, सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे।

अवस्था में अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत शाड विखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले। सुत धारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर राम दास राखो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर राम दास राखो सरनाई, सो कह टल गुर सेविया एहनस। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामंदी। नूर अरसह कुरसह, तुद्रिठे सचे पात सहा। मल जन्म

जिस पास बैठिया सोही सबनांदा सजन सच्चा पात साहो सिर सांद जिस पास

0: रसना रामत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई। कहो भीखन दोए नैन संतोखे जह देखा तह सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सिर मस्तक रखिया पार मस्तकाय रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चन रखिया जुगदी सरह सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन भगत बशर अनाथ नाथे। सर नानक पुरख चुत है बिलावल महला पंजवा। ताती वो न लगे पार सरनाई चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बंत बनाई राम नाम औख दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखनहार सब ब्याद मिटाई कहो नान कृपा भई प्रभु पे सहाय। सोहिलारा गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जयकर कीर्ता की है करते का होए विचारो जित कर गावो सोहिला शिव रहो सृजनहारो। तुम गावो मेरे निरभाव का सोहिला हो वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े संभाली ने देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तसदा ते कवन समार। संवत साह लिखिया मिलकर पावो तेल दिहो सजना सीसड़िया जो होवै साहब स्यो मेल। कर कर हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिय नानक से दयावन। रागासा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुरु गुर एको बेस अनेक। बाबा जयकर करते कीर्त होए सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ। विश्व सिया घड़िया पहरा इती वारी माहो होआ सूरज को रुत अनेक। नानक करते के किते वेस राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप माले आन लो पवन चवरो करे सगल बंदराए फूलंत ज्योति। ऐसी आरती होए पव खंडा तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत तेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त ननायक तोही। सहस पद विमल नन एक पाद गंध विन सहस तब गंध विचलत मोही। सामे जोत जोत है सोए तिस द चानन समय चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सो आरती होए। हर चरण काबल मकरंद लोहत मनो अंजन मोहयाही प्यासा। कृपा जल दे नानक सार कुह जाते तेरा नाए बासा। रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर व भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। ਪੂਰਵ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਾਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵਡਾਹੇ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵਡਾਹੇ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਨੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾਹੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲਾ ਚੁਬਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਹੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸ ਡੰਡਾਹੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਖੰਡਾਹੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੇ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਬਡ ਵਡਾਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾਹੇ ਰਾਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਨੀਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸਹੇਲਾ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰਹਿਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇਮ ਹੈ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਵਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ

पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखाई।

0: श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी। श्लोक महला पहला। बलहारी गुरे अपने देवहारी सदवा जिन मानस ते देवते की करतना लागी वार। महला दूजा। जे सौ चंदा उगव है सूरज चढ़ है हजार एते चानण होंदे आ गुरबिन घोर अंधार। महला पहला।
1: नानक गुरु ना चितनी मन अपना सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुन जाई अंदर खेत।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जलत विस्माद पौण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद।

नात्र निरंकार है, न लइए नरक न जाइए। जीव पिंड सतिस दा देखा जे अगवाइए, जे लोड़े चंगा अपना कृपुनो नि सदाइए। जे जरवाणा पर हरि जरवे।

कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पैननहार, कूड़ काया, कूड़

0: बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिरस वाले जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहा महला दूजा
1: जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग बे शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूद्र शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने पे ओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
0: एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा तय आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे ओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
1: कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी

माया मत कहाँ लो गारा, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात हृदय ना बिचारो, रथ न अस न गज सिंघासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दिष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कृतर साजन साख, उल्टत जात बिरंग की शार, दीन दयाल पुरख प्रापूरन, छिन छिन सिमरो अगम अपार, श्री पतनाथ शरण नानक जन।

आकाश नामावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर परयो है। दह दिस ताए महाबिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रो

0: प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा कर कृपा संत आप करियो है।
1: गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रभतारी साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण उदारी ओट गही स्वामी समर्थ नानक दास सदा बलहारी।
2: आवधि कट्यो ना जातो प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जर्यो ना जात रहो जन तूरे लग नीर ना साकस बोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अगम हो शिदे हर नाम खग।
3: उद्दम कर लगे बोह पाती बिचरे अनक शास्त्र बोह खटुआ पूजा चक्र करत पसम लगाए तीरथ बोह परमते सूखम देह बंधे बोह जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम।

सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफ तख समी नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डठे सच पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सत

ब्रह्मन् जे नर आराध्या तेने पौ सागर तरिया जिस मनुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया पर ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिने पौ सागर तरिया।

पै पंजन हर राया साध के चरण तोर जन बांछ सुख नानक हो पाया। खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गोजरी महला पंजवा जिस मानुख पह करां बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन भाओ सागर तरिया।